लड़ाई विच ओ हाल करना है कि दुनिया नू हैरान कर देना है। ए गल क्यों कही, आओ इस बारे

सेवक बन गए, पर पहाड़ी राजे इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने नितानी हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर हो गए सन के मुगल बादशाह दे अगे सिर नहीं सन चुक सकते।

उन्हां मूर्खां ने यह ना सोचिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडे भले वास्ते लड़दे ने, सगा ए लोग गुरु साहिबां दे नाल लड़ाई छेड़ बैठे। लड़ाइयां ते पहला भी हुईयां,

एक कसम लिख के भेजी के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक बारी तुसी किला खाली कर दियो किधरे होर चले जाओ। मैं कसम खाना कुरान शरीफ दी के तुहानू कुछ नहीं किया जाएगा। पहाड़ी राजिया ने आटे दी गऊ बना के कसम खाधी। सिखा ने कहा

पता नहीं किन्ने देन, होर इस किले विच भुखिया रहना पवेगा। कृपा करो अगर आपने किला खाली नहीं करना तो सानू आग्या दियो, असी अपने घरां नू जाइए। गुरु साहबा ने कहा, मैं ते पहला कहा सी कि जिन्हें मेरे को आना है, जिन्हें मेरी गली विच पैर पाना है, वो अपना सिर अपनी तली ते रख।

एक कागज लो। उस कागज ते ए लिख दियो, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, बेशक चले जाओ। अज भाई मान सिंह ने अपनी जान नु प्यारी समझे, कागज लिया उत्ते लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। 40 इन्ना दे साथी उन्ना भी लिख दिता, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं। अज मुश्किल दी घड़ी आई, भाई मान सिंह अपने साथियां समेत मुश्किल दे समय गुरु नु छड़ के अपने घरां नु तुर पए। पर गुरु डोलिया नहीं, गुरु डरिया नहीं, क्योंकि गुरु सच ते खलोता है, सच वास्ते लड़दा है, अपने भले वास्ते नहीं, ओ ते दुनिया दे भले वास्ते इस दुनिया विच आया है।

फिटकारा पईया, खून ने फिर उबाला खादा के मना बड़ी भुल की थी। दुनिया दे सुख बदले गुरु नु छड़ दिता, सिखी छड़ दिती, पर जिदी कोई इज्जत नहीं ओदा भी को जीवना है, सिर झुका के जीवना को जीवना है। धर्म वास्ते मरना, धर्म दे राह ते चल के मरना, देश कौम दी सेवा करदिया मरना असल विच जीवन है। पर हुण ए नहीं पता कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किस पासे, पता लग चुका है आनंदपुर साहब दा किला गुरु साहबां ने छड़ दिता, क्योंकि सिखा ने बड़ा जोर पाया किला छड़न वास्ते। किला छड़िया जिन्ना कुरान शरीफ दी कसम खादी, उन्ना कसमां तोड़ दित्तियां। जिन्ना आटे दी गऊ बना के कसम खादी, उन्ना भी कसमां तोड़ दित्तियां। गुरु साहबां दे काफले ते हमला कर दिता। इस हमले दे विच गुरु साहबां दा बड़ा कीमती समान, कीमती पुस्तकां लिखियां हुईयां सरसा नदी विच रुड़ गईयां।

हड्डियां दा मजबूत कमर कस्सा कीते यह है भाई मान सिंह म्यान विचू कृपान खिची जकारा छड़िया लकीर मारी लकीर टप्पी ते वंगार केके भाई मैनू अज गुरु दे हुकम दा पता लग गया। मैं अज ये फैसला कर लिया है हम तो गुरहित

कि दूरों कोई देखे ते पता लगे कि गुरु दा दल ऐस पासे। खिदराने दी टाप तो थोड़ी दूर एक उची टिब्बी ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिंघां समेत मोर्चा संभाल के बैठ गए।

दी पछाड़ छड़ो ताकि दुश्मन नु पता लगे गुरु दा दल ऐस पासे। गोलियां दी पछाड़ छड़ी वजीर खान भी गोलियां दा मी बरांदा होया खिदराणी दी ढाव वल वध्या। इधर गुरु के सिंह उधर वजीर खान ते ओदे सिपाही एक पासे तनखावां लैण वाले जिन्हां जानां भी बचाणियां ने एक पासे ओ

दियो ओज ऐसो हजारन जैसो महा को पठाने गज कीट माने बड़े उत्साहे रणंग शत्र गाहे उछलने छलंगी गुरु के पुचंगी के मेरे पुचंगी मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई दे मैदान विच नितरे कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया महा को पठाने गज कीट माने बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के पए।

बसया दरबार उज्जवल मुखड़ा ले जाए सरूपे वसया। ते गुरु साहबा ने भाई मान सिंह नु वार दिता, जाओ महा सिंह जय मम लोक, जा मां सिया मेरे देश जा, सदा बसो कब नै तै सोख।

पूरा हो गया। आप कई बार कह देने कोई मरे कि फलाना पूरा हो गया, नहीं, जिन्हें अमृत नहीं छकिया, गुरसिख परिवार विच जन्म लिया, सिखी विच पूरा नहीं, ना बाणी नाल जुड़िया, ना गुरु नाल जुड़िया, ना अमृत नाल जुड़िया, वो किवें पूरा हो सकता है। पूरा तो होया है भाई मास जिदा कोई जीवन नहीं चंगा, जिन्हें दुनिया का भला नहीं किया, जिन्हें ठगियां कीतियां, दुनिया नू धोखे दिते, अपने भले वास्ते लोकां नू दुख दिंदा है, वो जो मरदा है वो कदी पूरा नहीं हुंदा। पूरा वो है जिहड़ा सच्चा जीवन जीउंदा है, जिन्हू रब मिले वो पूरा है, परमेश्वर पूरा है, ते उहदे प्यारे पूरे ने, वो पूरा कदी नहीं होया जिहदा जीवन उच्चा है। किन्नी कृपा होई भाई मां सिंह, एक ओदा मरना जिहड़ा गुरु तू बेमुख होके मरदा है, इत्थे भी फिटकारा, दरगाह विच भी फिटकारा, एक मरना

मैं अनजान हां, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवता।